0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला का फैलाव जारी है और पड़ोसी देश युगांडा में भी संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ICAO ने देशों की सरकारों और विमान संचालकों से आग्रह किया है कि उन सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा जिन्हें पहले COVID-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था। कोंगो के पूर्वी हिस्से में इबोला की बुंडीबुग्यो नामक प्रजाति का संक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय है। यहां अब तक 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतों की जानकारी है। उधर युगांडा में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही इबोला को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया था और बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। UN एजेंसी ने चिंता जताई है कि जिस गति में संक्रमण मामलों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, यह बीमारी उसकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ने इबोला से उपजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा निर्देशों में बदलाव लाने की बात कही है, मगर यह भी स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं फिलहाल सुरक्षित हैं। यह 17वीं बार है जब डीआरसी में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ है। इस बीमारी के बारे में पहली बार 1976 में पता चला था। 218 से 220 के दौरान उत्तरी कीवु, दक्षिण कीवु और इतुरी प्रांतों में अब तक के सबसे बड़े स्तर के संक्रमण मामले दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में भूख यानी गंभीर खाद्य असुरक्षा कुछ चुनिंदा राज्यों में गहराई से जड़े जमा ली है। इस वर्ष की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि वर्ष 2025 में 47 देशों में 26 करोड़ 60 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में थे। UN एजेंसियों और यूरोपीय संघ की जारी इस वैश्विक रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये संख्या एक दशक पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: इस विश्लेषण में खाद्य सुरक्षा की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। भरपेट भोजन न मिल पाना अब केवल कुछ समय के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौती निरंतर बनी हुई है। गंभीर भूख का सबसे बड़ा कारण युद्ध या हिंसक टकराव है। गहरी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या के 50% से अधिक हिस्से के लिए यही जिम्मेदार है। पर्याप्त भोजन के अभाव से जूझ रहे कुल लोगों की 2/3 संख्या अब केवल 10 देशों में केंद्रित है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सीरिया, यमन और गाजा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और सूडान। 2025 पहला ऐसा वर्ष था जब एक ही

0: साल में दो अलग अलग अकाल दर्ज किए गए गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में। बच्चे सबसे अधिक प्रभावितों में हैं। 2025 में 3.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार थे। गाजा, म्यांमार, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक नहीं बल्कि कई संकटों ने स्थिति को बदतर बना दिया है। इनमें हिंसक टकराव या युद्ध, बीमारियों का फैलाव और बुनियादी सेवाओं तक कम पहुंच जैसी समस्याएं हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्च कार्यालय की एक रिपोर्ट में इसराइली सेना और लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाल ही में भड़के हिंसक युद्ध में आम नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों पर कहा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास, काम और स्वतंत्र आवाजाही समेत अन्य मानवाधिकारों पर गहरा असर हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
2: यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थमीन अल खीतान ने जिनेवा में बताया,
3: Our analysis of the large scale attacks, shelling and ground incursions.
2: प्रवक्ता अल खीतान कह रहे थे कि मानवाधिकार कार्यालय के विश्लेषण में पाया गया है कि इसराइली सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर छेड़ी सैन्य कार्रवाई, गोलाबारी और जमीनी अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों समेत आम नागरिकों पर सीधे तौर पर हमले किए। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह के हमले युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी जारी रहे। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए जिससे इमारतों और नागरिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची है। इन हमलों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताई है कि गाजा पट्टी में 1800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें गाजा सिटी में स्थित अलशिफा जैसे बड़े अस्पताल और छोटे स्तर पर संचालित होने वाले प्राथमिक केंद्र भी शामिल हैं।
1: मध्य पूर्व में ईरान में कई सप्ताह जारी रहे हमलों के बाद नाजुक परिस्थितियों में युद्ध विराम लागू हुआ है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई बमबारी शुरू कर दी थी। उसके बाद ईरान ने जवाबी ड्रोन व मिसाइली हमले किए थे जिनके चपेट में खाड़ी क्षेत्र के देश भी आए। मध्य पूर्व में इस टकराव के कारण तेल व गैस के बाद अब खनिजों का भी संकट उत्पन्न हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
0: संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 28 फरवरी को मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने से पहले तक प्रमुख खनिज पदार्थ और उनसे जुड़े उत्पाद विशाल मात्रा में उपलब्ध थे, मगर युद्ध के जारी रहने से सेमीकंडक्टर से लेकर सौर ऊर्जा पैनल तक हर चीज का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। बाजारों में उपभोक्ता सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप के लिए यूएन आर्थिक आयोग के अनुसार युद्ध का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तेल से प्राप्त होने वाले सल्फर, हीलियम और नेफ्था जैसे कुछ उप उत्पादों सब प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित कर रहा है। ये सभी कच्चे तेल के शोधन से मिलने वाले उत्पाद हैं और उर्वरक से लेकर कीटनाशकों, प्लास्टिक, माचिस के साथ साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। नेफ्था कच्चे तेल के शोधन का एक अन्य उप उत्पाद है और रसायन उद्योग का एक प्रमुख आधार भी। यूएन ने आशंका जताई है कि कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अब उद्योग भी इनके इस्तेमाल में कमी ला सकते हैं और इसलिए भविष्य में सौर ऊर्जा पैनल, मैग्नेट, बैटरी आदि का उत्पादन कम हो सकता है।
1: कामकाज के लंबे घंटे, कामकाज की असुरक्षा और बुलिंग यानी डराने धमकाने जैसे जोखिमों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हर साल लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
2: मनोवैज्ञानिक कामकाजी वातावरण, वैश्विक घटनाक्रम और कार्रवाई के रास्ते नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से कामकाज की प्रकृति और स्वरूप तैयार किए जाते हैं, दैनिक स्तर पर कामकाज को किस तरह किया और कराया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, उसका कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने इस स्थिति के लिए कार्यस्थलों पर काम के दबाव, प्रयास और प्रोत्साहन के बीच असंतुलन, रोजगार की असुरक्षा, लंबे समय तक काम करना और उत्पीड़न के माहौल को जिम्मेदार बताया है। चिंता की बात यह है कि ये प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है जो हृदय रोग और आत्महत्या सहित मानसिक विकारों

0: की बढ़ती दरों के रूप में सामने आ रहा है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें शनिवार 30 मई को वेटिकन गार्डन्स में युद्ध खत्म करने की अपनी बारंबार की अपील के साथ पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयं सेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अपने परमाधीक्षा काल के आरंभ ही से संत पापा लियो विश्व शांति हेतु अपनी अपीलों को दोहराते रहे हैं और लोगों से प्रार्थना का निवेदन करते रहे हैं। इसी संदर्भ में संत पापा रोम समय अनुसार शनिवार 30 मई को शाम 7 बजे मां मरियम को समर्पित महीने के अंत में वेटिकन गार्डन स्थित लूर्द की रानी मां मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। तमाम विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिन बड़े पुण्य स्थलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है उनमें यूक्रेन का मरियम तीर्थ, फिलीपींस का मरियम तीर्थ, पुर्तगाल का फातिमा नगर मरियम तीर्थ, बोस्निया हर्जेगोविना का मेज्जुगोर मरियम तीर्थ, फ्रांस का लूर्द की रानी मरियम को समर्पित तीर्थ स्थल, लेबनान का मरियम तीर्थ और इटली के लोरेटो में परम धर्म पीठीय हाउस ऑफ लोरेटो तीर्थ स्थल शामिल हैं। रोम में तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में लगी बड़ी स्क्रीन के जरिए प्रार्थना में हिस्सा ले सकेंगे। यह पहल सुसमाचार प्रचार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर एक बार फिर इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि तकनीकी विकास हालांकि मूल्यवान है, इसका उपयोग नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रगति अपने आप में मूल्यवान है, हालांकि उसके उपयोग के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टि को ध्यान से समझना जरूरी है, जो उसका मार्गदर्शन करता है तथा उसके लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। यदि टेक्नोलॉजिकल प्रगति बिना किसी नैतिक और सामाजिक विकास के आगे बढ़ती है तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि मानवता के विकास के बिना ही साधन बढ़ जाएंगे। बिना अधिक होने से अधिक होने में खतरा यह है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्पन्न की गई चीजों के आधार पर किया जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, सुसमाचार प्रचार न तो संरचनाओं की कुशलता पर निर्भर करता है, न ही समाज में इसकी अहमियत पर और न ही किसी खास समय पर

की, एक संपूर्ण जीवन की, एक ऐसी मुक्ति की इच्छा को आरोपित करते हैं जो स्वतंत्र करती है। हमारा पहला काम है कि हम प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं, न सिर्फ सख्त और कठोर जमीन पर दुख मनाएं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की आंखों से उस फसल को देख पाएं जिसे ईश्वर खुद हमारे लिए तैयार करते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में खलदई कैथलिक कलीसिया के संत योसेफ महागिरजाघर में शुक्रवार को बगदाद के खलदई प्राधिधर्माध्यक्ष महामहिम पोलिस तृतीय नोना का पद ग्रहण अनुष्ठान समारोह संपन्न हुआ। संत पापा लियो 14वें की ओर से पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल क्लाउडियो गुजरोती ने अनुष्ठान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने प्रवचन में कार्डिनल ने कहा कि यह दिन खलदेई कलीसिया के लिए, इराक के लिए और साथ ही सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए क्योंकि इस दिन यहाँ कैथलिक और दूसरी कलीसियाओं के वरिष्ठ धर्माधिकारी सहित अन्य धर्मों के प्रतिनिधि, नागर और समाज के अधिकारी तथा डिप्लोमेटिक संस्थाओं के प्रतिनिधि खलदेई कलीसिया के दीर्घकालीन और समृद्ध इतिहास को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्डिनल गुजरोती ने कहा कि संत पापा लियो 14वें की ओर से वे इराक की खलदेई कलीसिया के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते, आपके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते और इस समारोह में उपस्थित होकर भ्रातृत्वपूर्ण समर्थन का प्रदर्शन करते बहुत प्रसन्न थे। खलदेई कलीसिया के समृद्ध इतिहास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कार्डिनल महोदय ने कहा, खलदेई कलीसिया का इतिहास रहस्यों से भरा है और कई मायनों में हैरान करने वाला है। यह प्रेरितों के प्रथम वारिसों की कलीसिया है। इसकी जड़ें सीधे यीशु मसीह की धरती से जुड़ी हैं। यह वह मिशनरी धरती थी जो दुनिया के सुदूर इलाकों तक पहुंची और जिसने सुसमाचार प्रचार द्वारा लोगों को आलोकित किया। कार्डिनल ने कहा कि सुसमाचार प्रचार राजनैतिक सत्ता से नहीं आया, बल्कि राजनैतिक सत्ता को समझने की इसकी शक्ति से, इसके सिद्धांतों की समृद्धता, इसकी संस्कृति और इसके रीति रिवाजों की स्पष्टता से आया। उन्होंने कहा कि इराक की खलदेई कलीसिया ने संस्थागत तौर पर भी सराहनीय कार्य किए, जिसके गवाह इसके अनगिनत मठ और विख्यात एवं सम्मानित विश्वविद्यालय हैं। इन शिक्षण संस्थाओं ने प्राचीन ग्रीक लेखों के अनुवाद कार्यों सहित सबसे ऊंचे स्तर के दार्शनिक और धर्म तत्व वैज्ञानिक विस्तार को जन्म दिया। मशहूर अरबी अनुवादकों के साथ इसने यूरोपीय जगत के लिए एक पुल का काम किया और उस शानदार संस्कृति को जन्म दिया जिसकी रोमी जगत में कई तरह से नकल की गई और जिसका बाद में पश्चिमी कैथलिक कलीसिया के कुछ सबसे विख्यात ईश शास्त्रियों ने अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त कार्डिनल ने कहा कि दक्षिण भारत की कलीसिया आज भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इराक की खलदेई कलीसिया ने संपूर्ण विश्व में सबसे कामयाब और दिलचस्प ख्रिस्तीय समुदायों में से एक को एकजुट किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जटिल राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद इराक की कलीसिया अपने लोगों में विश्वास को सुदृढ़ कर पाएगी तथा एक बेहतर भविष्य की आशा को जगा पाएगी। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन की स्वास्थ्य देखभाल निधि फास के नए निर्देशक नियुक्त कर दिए गए हैं। यह निधि वैटिकन की वह संस्था है जो रोमी परम धर्म पीठीय कार्यालयों में सेवारत धर्म समाजियों और धर्म संघियों तथा वैटिकन में नौकरीरत आम लोगों और सेवानिवृत्त लोगों को हेल्थ केयर कवरेज की गारंटी देती है। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के कार्यालय के अधिकारी होंगे तथा आगामी 15 जुलाई को अपना पद संभालेंगे। उक्त कार्यालय के उपाध्यक्ष मान्यवर पाओलो रुदेली ने 28 मई को यह घोषणा की। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला का फैलाव जारी है और पड़ोसी देश युगांडा में भी संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ICAO ने देशों की सरकारों और विमान संचालकों से आग्रह किया है कि उन सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा जिन्हें पहले COVID-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था। कोंगो के पूर्वी हिस्से में इबोला की बुंडी बुग्यो नामक प्रजाति का संक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ अब तक 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतों की जानकारी है। उधर युगांडा में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही इबोला को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया था और बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। UN एजेंसी ने चिंता जताई है कि जिस गति में संक्रमण मामलों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, यह बीमारी उसकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ने इबोला से उपजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा निर्देशों में बदलाव लाने की बात कही है, मगर यह भी स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं फिलहाल सुरक्षित हैं। यह 17वीं बार है जब DRC में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ है। इस बीमारी के बारे में पहली बार 1976 में पता चला था। 218 से 220 के दौरान उत्तरी कीवु, दक्षिण कीवु और इतुरी प्रांतों में अब तक के सबसे बड़े स्तर के संक्रमण मामले दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में भूख यानी गंभीर खाद्य असुरक्षा कुछ चुनिंदा राज्यों में गहराई से जड़े जमा ली है। इस वर्ष की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि वर्ष 2025 में 47 देशों में 26 करोड़ 60 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में थे। UN एजेंसियों और यूरोपीय संघ की जारी इस वैश्विक रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये संख्या एक दशक पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: इस विश्लेषण में खाद्य सुरक्षा की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। भरपेट भोजन न मिल पाना अब केवल कुछ समय के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौती निरंतर बनी हुई है। गंभीर भूख का सबसे बड़ा कारण युद्ध या हिंसक टकराव है। गहरी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या के 50% से अधिक हिस्से के लिए यही जिम्मेदार है। पर्याप्त भोजन के अभाव से जूझ रहे कुल लोगों की 2/3 संख्या अब केवल 10 देशों में केंद्रित है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सीरिया, यमन और गाजा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और सूडान। 2025 पहला ऐसा वर्ष था जब एक ही साल में 2 अलग अलग अकाल दर्ज किए गए। गाजा और सूडान

0: के कुछ हिस्सों में बच्चे सबसे अधिक प्रभावितों में हैं। 2025 में 3.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार थे। गाजा, म्यांमार, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक नहीं बल्कि कई संकटों ने स्थिति को बदतर बना दिया है। इनमें हिंसक टकराव या युद्ध, बीमारियों का फैलाव और बुनियादी सेवाओं तक कम पहुंच जैसी समस्याएं हैं।
1: बड़े पैमाने पर छिड़ी सैन्य कार्रवाई, गोलाबारी और जमीनी अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों समेत आम नागरिकों पर सीधे तौर पर हमले किए। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह के हमले युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी जारी रहे। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए जिससे इमारतों और नागरिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची है। इन हमलों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताई है कि गाजा पट्टी में 1800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें गाजा सिटी में स्थित अलशिफा जैसे बड़े अस्पताल और छोटे स्तर पर संचालित होने वाले प्राथमिक केंद्र भी शामिल हैं।
2: मध्य पूर्व में ईरान में कई सप्ताह जारी रहे हमलों के बाद नाजुक परिस्थितियों में युद्ध विराम लागू हुआ है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई बमबारी शुरू कर दी थी। उसके बाद ईरान ने जवाबी ड्रोन व मिसाइली हमले किए थे जिनके चपेट में खाड़ी क्षेत्र के देश भी आए। मध्य पूर्व में इस टकराव के कारण तेल व गैस के बाद अब खनिजों का भी संकट उत्पन्न हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
0: संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 28 फरवरी को मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने से पहले तक प्रमुख खनिज पदार्थ और उनसे जुड़े उत्पाद विशाल मात्रा में उपलब्ध थे, मगर युद्ध के जारी रहने से सेमीकंडक्टर से लेकर सौर ऊर्जा पैनल तक हर चीज का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। बाजारों में उपभोक्ता सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप के लिए यूएन आर्थिक आयोग के अनुसार युद्ध का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तेल से प्राप्त होने वाले सल्फर, हीलियम और नेफ्था जैसे कुछ उप उत्पादों सब प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित कर रहा है। ये सभी कच्चे तेल के शोधन से मिलने वाले उत्पाद हैं और उर्वरक से लेकर कीटनाशकों, प्लास्टिक, माचिस के साथ साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। नेफ्था कच्चे तेल के शोधन का एक अन्य उप उत्पाद है और रसायन उद्योग का एक प्रमुख आधार भी। यूएन ने आशंका जताई है कि कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अब उद्योग भी इनके इस्तेमाल में कमी ला सकते हैं और इसलिए भविष्य में सौर ऊर्जा पैनल, मैग्नेट, बैटरी आदि का उत्पादन कम हो सकता है।
2: कामकाज के लंबे घंटे, कामकाज की असुरक्षा और बुलिंग यानी डराने धमकाने जैसे जोखिमों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हर साल लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
1: मनोवैज्ञानिक कामकाजी वातावरण, वैश्विक घटनाक्रम और कार्रवाई के रास्ते नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से कामकाज की प्रकृति और स्वरूप तैयार किए जाते हैं, दैनिक स्तर पर कामकाज को किस तरह किया और कराया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, उसका कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने इस स्थिति के लिए कार्यस्थलों पर काम के दबाव, प्रयास और प्रोत्साहन के बीच असंतुलन, रोजगार की असुरक्षा, लंबे समय तक काम करना और उत्पीड़न के माहौल को जिम्मेदार बताया है। चिंता की बात यह है कि ये प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है जो हृदय रोग और आत्महत्या सहित मानसिक विकारों की बढ़ती दरों के रूप में सामने आ रहा है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें शनिवार 30 मई को वेटिकन गार्डन्स में युद्ध खत्म करने की अपनी बारंबार की अपील के साथ पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयं सेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अपने परमाधीक्षी काल के आरंभ ही से संत पापा लियो विश्व शांति हेतु अपनी अपीलों को दोहराते रहे हैं और लोगों से प्रार्थना का निवेदन करते रहे हैं। इसी संदर्भ में संत पापा रोम समय अनुसार शनिवार 30 मई को शाम 7 बजे मां मरियम को समर्पित महीने के अंत में वेटिकन गार्डन स्थित लूर्द की रानी मां मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। तमाम विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिन बड़े पुण्य स्थलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है उनमें यूक्रेन का मरियम तीर्थ, फिलीपींस का मरियम तीर्थ, पुर्तगाल का फातिमा नगर मरियम तीर्थ, बोस्निया हर्जेगोविना का मेज्जुगोर मरियम तीर्थ, फ्रांस का लूर्द की रानी मरियम को समर्पित तीर्थ स्थल, लेबनान का मरियम तीर्थ और इटली के लोरेटो में परम धर्म पीठीय हाउस ऑफ लोरेटो तीर्थ स्थल शामिल हैं। रोम में तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में लगी बड़ी स्क्रीन के जरिए प्रार्थना में हिस्सा ले सकेंगे। यह पहल सुसमाचार प्रचार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर एक बार फिर इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि तकनीकी विकास हालांकि मूल्यवान है, इसका उपयोग नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रगति अपने आप में मूल्यवान है, हालांकि उसके उपयोग के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टि को ध्यान से समझना जरूरी है, जो उसका मार्गदर्शन करता है तथा उसके लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। यदि टेक्नोलॉजिकल प्रगति बिना किसी नैतिक और सामाजिक विकास के आगे बढ़ती है तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि मानवता के विकास के बिना ही साधन बढ़ जाएंगे। बिना अधिक होने से अधिक होने में खतरा यह है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्पन्न की गई चीजों के आधार पर किया जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, सुसमाचार प्रचार न तो संरचनाओं की कुशलता पर निर्भर करता है, न ही समाज में इसकी अहमियत पर और न ही किसी खास समय पर मिलने वाली आम सहमति पर। सबसे जरूरी बात है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना और उन रास्तों पर चलना जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, ताकि लोगों को मसीह के पास, उनके बचाने वाले मुक्तिदायी वचन के पास और उनके नव जीवन प्रदान करने वाले प्रेम के निकट लाया जा सके। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, ईश्वर अथक बोने वाले प्रतिदिन विश्व में जाते हैं और उदारतापूर्वक दिलों में अनंत की एक संपूर्ण जीवन की एक ऐसी मुक्ति की इच्छा को आरोपित करते हैं जो स्वतंत्र करती है। हमारा पहला काम है कि हम प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं, न सिर्फ सख्त और कठोर जमीन पर दुख मनाएं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की आंखों से उस फसल को देख पाएं जिसे ईश्वर खुद हमारे लिए तैयार करते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में खलदई कैथलिक कलीसिया के संत योसेफ महागिरजाघर में शुक्रवार को बगदाद के खलदई प्राधिधर्माध्यक्ष महामहिम पोलिस तृतीय नोना का पद ग्रहण अनुष्ठान समारोह संपन्न हुआ। संत पापा लियो 14वें की ओर से पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल क्लाउडियो गुजरोती ने अनुष्ठान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने प्रवचन में कार्डिनल ने कहा कि यह दिन खलदेई कलीसिया के लिए, इराक के लिए और साथ ही सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए क्योंकि इस दिन यहाँ कैथलिक और दूसरी कलीसियाओं के वरिष्ठ धर्माधिकारी सहित अन्य धर्मों के प्रतिनिधि, नागर और समाज के अधिकारी तथा डिप्लोमेटिक संस्थाओं के प्रतिनिधि खलदेई कलीसिया के दीर्घकालीन
और समृद्ध इतिहास को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्डिनल गुजेरौती ने कहा कि संत पापा लियो 14वें की ओर से वे इराक की खलदेई कलीसिया के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते, आपके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते और इस समारोह में उपस्थित होकर भ्रातृत्वपूर्ण समर्थन का प्रदर्शन करते बहुत प्रसन्न थे। खलदेई कलीसिया के समृद्ध इतिहास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कार्डिनल महोदय ने कहा, खलदेई कलीसिया का इतिहास रहस्यों से भरा है और कई मायनों में हैरान करने वाला है। यह प्रेरितों के प्रथम वारिसों की कलीसिया है। इसकी जड़ें सीधे यीशु मसीह की धरती से जुड़ी हैं। यह वह मिशनरी धरती थी जो दुनिया के सुदूर इलाकों तक पहुंची और जिसने सुसमाचार प्रचार द्वारा लोगों को आलोकित किया। कार्डिनल ने कहा कि सुसमाचार प्रचार राजनैतिक सत्ता से नहीं आया, बल्कि राजनैतिक सत्ता को समझने की इसकी शक्ति से, इसके सिद्धांतों की समृद्धता, इसकी संस्कृति और इसके रीत रिवाजों की स्पष्टता से आया। उन्होंने कहा कि इराक की खलदेई कलीसिया ने संस्थागत तौर पर भी सराहनीय कार्य किए, जिसके गवाह इसके अनगिनत मठ और विख्यात एवं सम्मानित विश्वविद्यालय हैं। इन शिक्षण संस्थाओं ने प्राचीन ग्रीक लेखों के अनुवाद कार्यों सहित सबसे ऊंचे स्तर के दार्शनिक और धर्म तत्व वैज्ञानिक विस्तार को जन्म दिया। मशहूर अरबी अनुवादकों के साथ इसने यूरोपीय जगत के लिए एक पुल का काम किया और उस शानदार संस्कृति को जन्म दिया जिसकी रोमी जगत में कई तरह से नकल की गई और जिसका बाद में पश्चिमी कैथलिक कलीसिया के कुछ सबसे विख्यात ईश शास्त्रियों ने अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त कार्डिनल ने कहा कि दक्षिण भारत की कलीसिया आज भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इराक की खलदेई कलीसिया ने संपूर्ण विश्व में सबसे कामयाब और दिलचस्प ख्रिस्तीय समुदायों में से एक को एकजुट किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जटिल राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद इराक की कलीसिया अपने लोगों में विश्वास को सुदृढ़ कर पाएगी तथा एक बेहतर भविष्य की आशा को जगा पाएगी। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन की स्वास्थ्य देखभाल निधि फास के नए निर्देशक नियुक्त कर दिए गए हैं। यह निधि वैटिकन की वह संस्था है जो रोमी परम धर्म पीठीय कार्यालयों में सेवारत धर्म समाजियों और धर्म संघियों तथा वैटिकन में नौकरीरत आम लोगों और सेवानिवृत्त लोगों को हेल्थ केयर कवरेज की गारंटी देती है। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के कार्यालय के अधिकारी होंगे तथा आगामी 15 जुलाई को अपना पद संभालेंगे। उक्त कार्यालय के उपाध्यक्ष मान्यवर पाओलो रुदेली ने 28 मई को यह घोषणा की। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है

0: वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओ, एक सच्चे और स्वार्थहीन प्रेम की अभिव्यक्ति अपने को देने में व्यक्त होती है। प्रेम में अपने को किसी के लिए देना इस भांति एक वह भाषा बनती है जिसके माध्यम हम शब्दों को उच्चारित किए बिना ही अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने दिल की भावनाओं का पिटारा खोलते हैं। प्रेम का सच्चा अर्थ किसी के लिए कोई बहुमूल्य उपहार देना मात्र ही नहीं है, बल्कि हम इसमें प्रेम करने और प्रेम पाने वाले दो व्यक्तियों के बीच आपसी मधुर संबंध की वास्तविकता को पाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में संत पौलुस के द्वारा प्रेम के गुणों की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे हम कुरिन्थियों के नाम उनके पहले पत्र के अध्याय 13 पद 4 से 7 में पाते हैं, जिसका अंतिम भाग हमें कहता है, प्रेम सब कुछ में विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का महोत्सव मनाती है, जो हमारे लिए ईश्वर के अनंत प्रेम के स्रोत हैं। आइए हम आज के सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में मिले प्रेम को हम किस रूप में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष निशानी क्या है? क्या हम ईश्वर से मिले उन प्रेम की निशानियों में उनकी महिमा और प्रशंसा सदैव करने के योग्य होते हैं?
1: ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौटे पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को देखने, उसे पहचानने और उसका प्रत्युत्तर देने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए बांटने के योग्य हो सकें। श्रोताओं, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए संहिता को हाथ में लिए मूसा का सीनाई पर्वत में याहवे से मिलन का जिक्र करता है, जहां ईश्वर उन्हें अपने गुणों को प्रकट करते हैं कि वे करुणामय और कृपालु, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा के ईश्वर हैं। वे देर से क्रोध करते हैं। ईश्वर के ये गुण स्वतः ही हमें अपने को ईश्वर की ओर आने हेतु प्रेरित करते हैं। श्रोताओ, मानव अपने जीवन में उन लोगों के संग संबंध स्थापित करने की चाह रखता है जो अपने स्वभाव में नम्र और दीन हैं, जो सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। हमारी यह चाह स्वयं हमें दूसरों के प्रति करुणावान और निष्ठामय बने रहने की चुनौती प्रस्तुत करती है। अतः हमें व्याप्त ईश्वरीय गुणों का आपसी आदान प्रदान हमें या तो किसी व्यक्ति के निकट लाता या हमें किसी से दूर कर देता है। इस भांति देखा जाए तो हमारे संबंधों की शुरुआत हमारे लिए हमारे अच्छे आचार विचार और सुंदर व्यवहार के कारण होती है। हम अपने में जो सोचते कहते और करते हैं वही दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। श्रोताओ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ इस विषय वस्तु में और गहराई से प्रकाश डालता और हमें अपने जीवन में पूर्ण बनने का आह्वान करता है। हमारे लिए एकता, शांति और आपसी भाईचारे की भावना अर्थात प्रेम में बने रहना, जहां हमारा किसी से तनाव और तकरार नहीं होता, जिसके कारण हम अपने जीवन में शांति का एहसास करते हैं, हमें परिपूर्ण जीवन की अनुभूति लाती है। और यही हर मानव के हृदय की एक विशेष चाह है, जहां हममें से हर कोई सदैव शांति और एकता में बने रहने की कामना करता है। मानव के जीवन में यह एकता और शांति किसी भी कीमत पर किसी के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। वहीं वर्तमान परिस्थिति में हम कितने ही धनवान और समृद्ध व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने जीवन में सारी चीजों के होते हुए भी अपने हृदय की गहराई में बेचैनी और शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें जीवन जीने का सुकून प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, यह हमें आज के सुसमाचार की बातों को समझने में मदद करता है, जिसमें हमने पिता ईश्वर के द्वारा अपने पुत्र को दुनिया के लिए भेजे जाने की बात सुनी, जिससे हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। पिता ईश्वर स्वयं अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजते हैं। वे उन्हें हमें देते हैं क्योंकि वे हम में से हर एक जन को अतुल्य प्रेम करते हैं। पिता के इस दान में हम उनकी मुक्ति योजना के रहस्य को पाते हैं, अर्थात सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने की उनकी चाह। पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना में हम त्रित्वमय ईश्वर की एकता, प्रेम और आपसी सहयोग को पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने रोज दिन के जीवन में करते हैं। श्रोताओं, दुनिया में आने के द्वारा यीशु अपनी शिक्षा और अपने कार्यों के माध्यम हमारे लिए अपने पिता के प्रेम को व्यक्त करते हैं, विशेषकर इस रहस्य को कि वे पिता के मुक्तिदाता परम प्रिय पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा की शक्ति में पिता के कार्यों को पूरा करते हैं। इस भांति वे हमें अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं, जो मुझमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के कारण मुक्ति के असंख्य कार्यों, विशेषकर अंधों, लंगड़ों, बहरों, कई तरह की बीमारियों, कोढ़ियों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों की चंगाई और यहाँ तक कि मृत्यु से जीवन प्राप्ति की चर्चा करता है। श्रोताओं, आज हमें दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने का आह्वान किया जाता है, जो हमारे कारण दुख उठाते, क्रूस पर मर जाते और मृतकों में से जी उठकर आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। अपनी शिक्षा और कार्यों के माध्यम उन्होंने हमारे लिए पिता के प्रेम का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे हम उनमें विश्वास करें। यदि हम उन पर विश्वास करते और उनके शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करते तो हम अपनी ओर से उन्हें अपना प्रेम दिखलाते हैं और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे नेक कार्यों में व्यक्त करें, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए किया। हमारा ऐसा करना हमें त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम तथा आशीष वरदानों से पोषित करेगा और हम अपने जीवन में ईश्वरीय शांति को सदैव अनुभव करेंगे, जिसकी कामना हम सभी करते हैं, क्योंकि उसी शांति और एकता में हम अपने मानवीय जीवन की परिपूर्णता का एहसास करते हैं।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज शनिवार 30 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में चेंतेसिमुस आनुस प्रो पोंटिफिस संस्थान के करीब 400 सदस्यों से मुलाकात की। उनका अभिवादन कर संत पापा ने आज के समाज में कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की अहमियत पर जोर देने के लिए हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास को याद किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा विषय है जो खासकर मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यह दुनिया में कलीसिया के मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए विश्व पत्र संत पापा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देता है। सबसे पहले आम मानवता पर सोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां युद्ध और बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक बंटवारा भी है। फिर भी इस नाजुकता के बीच हमें उम्मीद जगी है। भले ही बंटवारा बढ़ता हुआ लगे, लेकिन एक आम बात सामने आती है जो बिना किसी शक के हम सभी को जोड़ती है, हमारी आम मानवता। मुश्किल समय में इंसानियत को एक बुनियादी सवाल पर फिर से सोचना पड़ता है, एक इंसानी समुदाय के तौर पर किस दिशा में जाना है। संत पापा बताते हैं कि यह एक जरूरी सवाल है। ये सवाल इंसानियत की सच की खोज का साफ सबूत है और कुछ और पाने की चाहत, ईश्वर के लिए प्यास और मकसद की एक पक्की भावना को जन्म देते हैं। संत पापा आगे कहते हैं कि इंसान के दिल में आज़ादी की चाहत भी होती है, जिसे जो चाहे वो करने की काबिलियत या पूरी तरह से आज़ादी के तौर पर नहीं, बल्कि रिश्तों से जुड़ा पहलू, खुद को देना और दूसरों के लिए खुलापन के तौर पर समझा जाता है। संत पापा इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की आज़ादी संत अगुस्टीन के बताए गए सिटी ऑफ गॉड की याद दिलाती है। खुद को देने की हद तक ईश्वर से प्यार और रिश्तों को बढ़ाने पर आधारित यह प्यार की सभ्यता बनाना सच में मुमकिन बनाती है। संत पापा अंत में हिम्मत देते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हमें निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि छोटी और पक्की वफादारी को लागू करके और हर इंसान की आम इंसानियत को पहचानने और उसकी कद्र करने वाली सच्चाई पर आधारित बातचीत करके इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक दीवार बनानी चाहिए। और संत पापा लियो 14वें और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच शुक्रवार दोपहर को विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के प्रकाशन के मौके पर फोन पर बातें हुई। वाटिकन प्रेस ऑफिस के एक बयान अनुसार दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक नजरिए से और इंसानी सोच के साथ विकसित करने की अहमियत पर चर्चा हुई। बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी फायदे के सवालों पर भी बातें हुई। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो इस समय की सबसे जरूरी और अहम चुनौतियों में से एक पर आधारित सभा में भाग लेने आए हैं, जिसका शीर्षक है, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी के बीच रिश्ता। अपने भाषण में संत पापा लियो ने लैटिन अमेरिका के लिए अपने प्यार को याद किया और पारंपरिक हाथ से बने कपड़ों की तस्वीर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अपने कई धागों और चटकीले रंगों के साथ ये कपड़े दिखाते हैं कि पैटर्न बनाने के लिए कोई एक धागा काफी नहीं है। हर धागा और हर रंग का मतलब सिर्फ एक बड़ी टेपेस्ट्री में ही मिलता है। संत पापा ने कहा कि शिक्षा का मकसद खुद को अलग थलग लोगों को बनाने के तौर पर नहीं, बल्कि मेलजोल बढ़ाने की कला के तौर पर फिर से खोजना है। संत पापा ने कहा कि कई युवाओं के पास सबसे आधुनिक साधन है, फिर भी वे अपनी जिंदगी उम्मीदों और प्यार और यहाँ तक कि तकलीफों को भी मतलब देने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हालात मानसिक कमजोरी के रूप को दिखाते हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो उन्हें कार्य और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की ओर धकेलती है, जिससे चिंता, फेल होने का डर और भटकाव पैदा होता है। जब इंसान मतलब ढूंढ पाते हैं तो वे पूरी तरह से जी सकते हैं और अंदर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है और उसे प्यार किया जाता है,
उसका इंतजार किया जाता है और दुनिया में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया है, तो उम्मीद फिर से पैदा होती है। संत पापा ने कहा कि युवाओं को शांति, सोच विचार, सवाल पूछने की काबिलियत, रिश्तों की गहराई और आगे बढ़ने के लिए खुलेपन को फिर से खोजने में मदद करने की जरूरत है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के 4,500 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि आज के समाज में बढ़ते सेकुलराइजेशन को देखते हुए हमारे अस्तित्व को नया करने का मतलब है अपने अंदर प्यार करने की एक नई काबिलियत को फिर से जगाना, एक ऐसा दान जो खालीपन और अकेलेपन की भावना से परेशान लोगों की ओर कृपा की धारा की तरह उमड़ता और बहता है, एक ऐसा दान जो आत्म स्वीकृति की इच्छा की चाहत से भटकता नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जो ईश्वर को अब एक साधारण विचार नहीं बल्कि पिता होने का असली और पक्का अभिव्यक्ति बनाता है। और संत पापा लियो आज रोम के समय अनुसार शाम 7 बजे माँ मरियम को समर्पित महीने के अंत में वाटिकन उद्यान स्थित लूर्द की माँ मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयंसेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, एक सच्चे और स्वार्थहीन प्रेम की अभिव्यक्ति अपने को देने में व्यक्त होती है। प्रेम में अपने को किसी के लिए देना इस भांति एक वह भाषा बनती है जिसके माध्यम हम शब्दों को उच्चारित किए बिना ही अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने दिल की भावनाओं का पिटारा खोलते हैं। प्रेम का सच्चा अर्थ किसी के लिए कोई बहुमूल्य उपहार देना मात्र ही नहीं है, बल्कि हम इसमें प्रेम करने और प्रेम पाने वाले दो व्यक्तियों के बीच आपसी मधुर संबंध की वास्तविकता को पाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में संत पौलुस के द्वारा प्रेम के गुणों की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे हम कुरिन्थियों के नाम उनके पहले पत्र के अध्याय 13 पद 4-7 में पाते हैं, जिसका अंतिम भाग हमें कहता है, प्रेम सब कुछ में विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का महोत्सव मनाती है, जो हमारे लिए ईश्वर के अनंत प्रेम के स्रोत हैं। आइए हम आज के सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में मिले प्रेम को हम किस रूप में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष निशानी क्या है? क्या हम ईश्वर से मिले उन प्रेम की निशानियों में उनकी महिमा और प्रशंसा सदैव करने के योग्य होते हैं?
1: ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौटे पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को देखने, उसे पहचानने और उसका प्रत्युत्तर देने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए बांटने के योग्य हो सकें। श्रोताओं, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए संहिता को हाथ में लिए मूसा का सीनाई पर्वत में याहवे से मिलन का जिक्र करता है, जहां ईश्वर उन्हें अपने गुणों को प्रकट करते हैं कि वे करुणामय और कृपालु, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा के ईश्वर हैं। वे देर से क्रोध करते हैं। ईश्वर के ये गुण स्वतः ही हमें अपने को ईश्वर की ओर आने हेतु प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, मानव अपने जीवन में उन लोगों के संग संबंध स्थापित करने की चाह रखता है जो अपने स्वभाव में नम्र और दीन हैं, जो सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। हमारी यह चाह स्वयं हमें दूसरों के प्रति करुणावान और निष्ठामय बने रहने की चुनौती प्रस्तुत करती है। अतः हम में व्याप्त ईश्वरीय गुणों का आपसी आदान प्रदान हमें या तो किसी व्यक्ति के निकट लाता या हमें किसी से दूर कर देता है। इस भांति देखा जाए तो हमारे संबंधों की शुरुआत हमारे लिए हमारे अच्छे आचार विचार और सुंदर व्यवहार के कारण होती है। हम अपने में जो सोचते कहते और करते हैं वही दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। श्रोताओं, कुरुण

हृदय की एक विशेष चाह है, जहां हम में से हर कोई सदैव शांति और एकता में बने रहने की कामना करता है। मानव के जीवन में यह एकता और शांति किसी भी कीमत पर किसी के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। वहीं वर्तमान परिस्थिति में हम कितने ही धनवान और समृद्ध व्यक्तियों को देखते हैं, जो अपने जीवन में सारी चीजों के होते हुए भी अपने हृदय की गहराई में बेचैनी और शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें जीवन जीने का सुकून प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, यह हमें आज के सुसमाचार की बातों को समझने में मदद करता है, जिसमें हमने पिता ईश्वर के द्वारा अपने पुत्र को दुनिया के लिए भेजे जाने की बात सुनी, जिससे हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। पिता ईश्वर स्वयं अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजते हैं। वे उन्हें हमें देते हैं क्योंकि वे हम में से हर एक जन को अतुल्य प्रेम करते हैं। पिता के इस दान में हम उनकी मुक्ति योजना के रहस्य को पाते हैं, अर्थात सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने की उनकी चाह। पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना में हम त्रित्वमय ईश्वर की एकता, प्रेम और आपसी सहयोग को पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने रोज दिन के जीवन में करते हैं। श्रोताओं, दुनिया में आने के द्वारा यीशु अपनी शिक्षा और अपने कार्यों के माध्यम हमारे लिए अपने पिता के प्रेम को व्यक्त करते हैं, विशेषकर इस रहस्य को कि वे पिता के मुक्तिदाता परम प्रिय पुत्र हैं, जो पवित्र आत्मा की शक्ति में पिता के कार्यों को पूरा करते हैं। इस भांति वे हमें अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं, जो मुझमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के कारण मुक्ति के असंख्य कार्यों, विशेषकर अंधों, लंगड़ों, बहरों, कई तरह की बीमारियों, कोढ़ियों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों की चंगाई और यहाँ तक कि मृत्यु से जीवन प्राप्ति की चर्चा करता है। श्रोताओं, आज हमें दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने का आह्वान किया जाता है, जो हमारे कारण दुख उठाते, क्रूस पर मर जाते और मृतकों में से जी उठकर आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। अपनी शिक्षा और कार्यों के माध्यम उन्होंने हमारे लिए पिता के प्रेम का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे हम उनमें विश्वास करें। यदि हम उन पर विश्वास करते और उनके शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करते, तो हम अपनी ओर से उन्हें अपना प्रेम दिखलाते हैं और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे नेक कार्यों में व्यक्त करें, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए किया। हमारा ऐसा करना हमें त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम तथा आशीष वरदानों से पोषित करेगा और हम अपने जीवन में ईश्वरीय शांति को सदैव अनुभव करेंगे, जिसकी कामना हम सभी करते हैं, क्योंकि उसी शांति और एकता में हम अपने मानवीय जीवन की परिपूर्णता का एहसास करते हैं।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज शनिवार 30 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में चेंतेसिमुस आनुस प्रो पोंटिफिस संस्थान के करीब 400 सदस्यों से मुलाकात की। उनका अभिवादन कर संत पापा ने आज के समाज में कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की अहमियत पर जोर देने के लिए हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास को याद किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा विषय है जो खासकर मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यह दुनिया में कलीसिया के मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए विश्व पत्र संत पापा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देता है। सबसे पहले आम मानवता पर सोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां युद्ध और बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक बंटवारा भी है। फिर भी इस नाजुकता के बीच हमें उम्मीद जगी है। भले ही बंटवारा बढ़ता हुआ लगे, लेकिन एक आम बात सामने आती है जो बिना किसी शक के हम सभी को जोड़ती है, हमारी आम मानवता। मुश्किल समय में इंसानियत को एक बुनियादी सवाल पर फिर से सोचना पड़ता है, एक इंसानी समुदाय के तौर पर किस दिशा में जाना है। संत पापा बताते हैं कि यह एक जरूरी सवाल है। ये सवाल इंसानियत की सच की खोज का साफ सबूत है और कुछ और पाने की चाहत, ईश्वर के लिए प्यास और मकसद की एक पक्की भावना को जन्म देते हैं। संत पापा आगे कहते हैं कि इंसान के दिल में आज़ादी की चाहत भी होती है, जिसे जो चाहे वो करने की काबिलियत या पूरी तरह से आज़ादी के तौर पर नहीं, बल्कि रिश्तों से जुड़ा पहलू, खुद को देना और दूसरों के लिए खुलापन के तौर पर समझा जाता है। संत पापा इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की आज़ादी संत अगुस्टीन के बताए गए सिटी ऑफ गॉड की याद दिलाती है। खुद को देने की हद तक ईश्वर से प्यार और रिश्तों को बढ़ाने पर आधारित यह प्यार की सभ्यता बनाना सच में मुमकिन बनाती है। संत पापा अंत में हिम्मत देते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हमें निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि छोटी और पक्की वफादारी को लागू करके और हर इंसान की आम इंसानियत को पहचानने और उसकी कद्र करने वाली सच्चाई पर आधारित बातचीत करके इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक दीवार बनानी चाहिए। और संत पापा लियो 14वें और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच शुक्रवार दोपहर को विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के प्रकाशन के मौके पर फोन पर बातें हुई। वाटिकन प्रेस ऑफिस के एक बयान अनुसार दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक नजरिए से और इंसानी सोच के साथ विकसित करने की अहमियत पर चर्चा हुई। बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी फायदे के सवालों पर भी बातें हुई। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो इस समय की सबसे जरूरी और अहम चुनौतियों में से एक पर आधारित सभा में भाग लेने आए हैं, जिसका शीर्षक है, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी के बीच रिश्ता। अपने भाषण में संत पापा लियो ने लैटिन अमेरिका के लिए अपने प्यार को याद किया और पारंपरिक हाथ से बने कपड़ों की तस्वीर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अपने कई धागों और चटकीले रंगों के साथ ये कपड़े दिखाते हैं कि पैटर्न बनाने के लिए कोई एक धागा काफी नहीं है। हर धागा और हर रंग का मतलब सिर्फ एक बड़ी टेपेस्ट्री में ही मिलता है। संत पापा ने कहा कि शिक्षा का मकसद खुद को अलग थलग लोगों को बनाने के तौर पर नहीं, बल्कि मेलजोल बढ़ाने की कला के तौर पर फिर से खोजना है। संत पापा ने कहा कि कई युवाओं के पास सबसे आधुनिक साधन है, फिर भी वे अपनी जिंदगी उम्मीदों और प्यार और यहाँ तक कि तकलीफों को भी मतलब देने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हालात मानसिक कमजोरी के रूप को दिखाते हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो उन्हें कार्य और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की ओर धकेलती है, जिससे चिंता, फेल होने का डर और भटकाव पैदा होता है। जब इंसान मतलब ढूंढ पाते हैं तो वे पूरी तरह से जी सकते हैं और अंदर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है और उसे प्यार किया जाता है,
उसका इंतजार किया जाता है और दुनिया में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया है, तो उम्मीद फिर से पैदा होती है। संत पापा ने कहा कि युवाओं को शांति, सोच विचार, सवाल पूछने की काबिलियत, रिश्तों की गहराई और आगे बढ़ने के लिए खुलेपन को फिर से खोजने में मदद करने की जरूरत है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के 4,500 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि आज के समाज में बढ़ते सेकुलराइजेशन को देखते हुए हमारे अस्तित्व को नया करने का मतलब है अपने अंदर प्यार करने की एक नई काबिलियत को फिर से जगाना, एक ऐसा दान जो खालीपन और अकेलेपन की भावना से परेशान लोगों की ओर कृपा की धारा की तरह उमड़ता और बहता है, एक ऐसा दान जो आत्म स्वीकृति की इच्छा की चाहत से भटकता नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जो ईश्वर को अब एक साधारण विचार नहीं बल्कि पिता होने का असली और पक्का अभिव्यक्ति बनाता है। और संत पापा लियो आज रोम के समय अनुसार शाम 7 बजे माँ मरियम को समर्पित महीने के अंत में वाटिकन उद्यान स्थित लूर्द की माँ मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयंसेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।